अक्षय पालीवाल इज सीन ग्रूविंग टू वो लड़की है कहाँ वाइल कैरिंग हिज डॉटर इन अ बेबी कैरियर. द होलसम फादर डॉटर मोमेंट हैज लेफ्ट व्यूअर्स स्माइलिंग विद मेनी कॉलिंग इट द काइंड ऑफ कॉन्टेंट द इंटरनेट नीड्स मोर ऑफ.

0: unusual crossover delighted social media users, with many calling it a proud fusion of Indian tradition and global travel.
1: बॉलीवुड कैरेक्टर जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तीन इडियट्स से रैंचो, हर एक इंसान एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है, रैंक्स के पीछे पड़ा हुआ है, सैलरी के पीछे पड़ा हुआ है।
0: इन्फ्लुएंसर अंकुर वारिकु इज ट्रेंडिंग आफ्टर शेयरिंग थ्री लाइफ लेसंस इंस्पायर्ड बाय आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर्स।
1: लेकिन दोबारा से अर्जुन पैसे थे, शान थी, शौकत थी, लेकिन अकेला था। जब अपने दोस्तों को आजादी से जिंदगी जीते हुए देखा,
0: ड्रॉइंग विजडम फ्रॉम रैंचो एंड थ्री इडियट्स, अर्जुन इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड डॉक्टर जहांगीर खान इन डियर जिंदगी।
1: नंबर तीन, डियर जिंदगी से डॉक्टर खान कभी ये नहीं बोला कि करना क्या है, सवाल पूछ पूछ के खुद ब खुद उसको जवाब तक पहुंचा दिया।
0: वारिकु एक्सप्लेन्ड हाउ ईच कैरेक्टर ऑफर्स वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स ऑन सक्सेस, हैप्पीनेस एंड इमोशनल वेलबीइंग।
1: एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है, रैंक्स के पीछे पड़ा हुआ है, सैलरी के पीछे पड़ा हुआ है, वो सीखने के पीछे पड़ा हुआ था। कोई पूछता नहीं था तो वो सवाल पूछता था, कोई मदद मांगता नहीं था लेकिन वो मदद करता था।
0: द रिलेटेबिलिटी हैज स्ट्रक अ कॉर्ड विद ऑडियंस ऑनलाइन।
1: शांति, शौकत थी लेकिन अकेला था। जब अपने दोस्तों को आजादी से जिंदगी जीते हुए देखा तो एहसास हुआ कि वो कैद में अपनी ड्रीम लाइफ त्याग कर खुद के लिए जिंदगी बनाई।
2: गाइस, सो एज यू गाइस कैन सी, दिस इज द वायरल बर्थडे स्पॉट, दिस इज द फर्स्ट बर्थडे दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड।
0: अ हैदराबाद क्रिएटर हैज लेफ्ट द इंटरनेट अम्यूज्ड आफ्टर स्पॉटिंग समथिंग अनयूजुअल ऑन अ बिजी सिटी रोड, मल्टीपल बर्थडे पार्टीज टेकिंग प्लेस ऑन द रोड डिवाइडर।
2: लाइफ ऐसी है हैदराबाद में, देखो फोर्थ बर्थडे, ठीक है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बस ये अभी शुरू हुआ है। आप देखो ये फिफ्थ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाइस।
0: The viral video shows several groups gathered along the divider, each seemingly celebrating a birthday.
2: 9th birthday, oh my god, 10th birthday. Hyderabad dividers are known for birthdays. Oh my god, 11th.
0: Bizarre yet fascinating sight sparked jokes online, with users calling it Hyderabad's newest party destination.
2: Hyderabad, kya chal raha hai? Samajh nahi aaya. 15 birthday dekh liye, do last point.
3: Let me tell you something about trust. How human trust human in Scandinavia. This is 10 p.m. in the evening.
0: An Indian man living in Norway has sparked discussion online after showcasing a flower shop that operates largely on trust.
3: If you want to buy something, you can just pick it up, pay this amount. They have a number which they have placed at the door, and you just pay for it and that's it.
0: Even after closing hours, flowers and plants remain displayed outside, accessible to anyone passing by. The video promoted conversation about honesty, civic responsibility and whether such a system could function in other parts of the world.
3: Kept outside all these spots. And what they trust people to do is, if you really want to buy something, you can just pick it up, pay this amount, they have a number which they have placed at the door, and you just pay for it and that's it. They trust you to pick it up and pay for it, and that's how it works out in Scandinavia.
0: A woman from Uttar Pradesh is winning hearts online after surprising her husband with a handmade birthday scrapbook.

0: director Konstantin Bojanov's film, Anasuya was even honored with the Best Actress Award in the Uncertain Regards section. For The Unworst, the Shameless revolved around Anasuya's character Renuka, a sex worker who reaches a brothel in Delhi in an uncertain circumstance and falls in love with another woman. The Shameless also features Omara, Arushika Dey and Rohit Kokake in pivotal roles. Badhai Do 2022.
1: Naam?
2: Saman.
1: Title?
2: Singh.
1: Gender?
2: Aapko kya lagta
1: hai? Female.
3: चार साल से जिद पकड़े बैठे हैं, इसी लड़की से शादी करूंगा।
2: अरे नहीं करनी मुझे शादी वादी।
4: 31 की हो गई है, तेरा भविष्य क्या है? गणित की टीचर बन जाती, साइंस पढ़ाती, पीटी टीचर बन गई, उसकी तो ट्यूशन भी नहीं होती है।
0: One of the best films to have portrayed queer people in cinema was the 2022 film Badhai Do.
5: टू के लग गए, सेम कास्ट।
6: मुझे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है।
5: हमें पता है।
6: क्या पता है?
5: पर कोई टेंशन नहीं है, हम समझते हैं, आपकी रक्षा भी कर लेंगे।
0: The film told the story of a gay man, Shardul, played by Rajkumar Rao,
7: होम्योपैथी में भी दवा नहीं है इस बीमारी की।
5: क्या
0: And a lesbian woman, Sumi, played by Bhumi Pernekar, who gets into a marriage of convenience and the struggle the protagonists face.
8: मेरे parents तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। लगा था दीदी समझेगी, पर अभी नीस के पास भी नहीं जान देती।
2: तूने बताया ही क्यों?
8: सोचा था family है ना, समझ जाएगा।
2: सनी, कोई नहीं समझता यार। हम डिफरेंट है ना, और समझाना भी क्यों है, हमारे लाइफ का हिस्सा है, फ्री लाइफ थोड़ी ना है।
0: The film received a lot of love from cine fans. Bhumi and Raj's layered yet power-packed performances got a thumbs up from the critics too.
2: Hello.
5: मैं हमने बोल दिया।
9: सबको बता दिया।

0: आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई।
1: शुभ मंगल ज्यादा सावधान 2020।
2: सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना, अपने आंगन में फूट रहे हैं।
3: जो तुम्हारे कमरे में गंदी गंदी सीढ़ियाँ होती थी ना, अमन वही देखा करता था। उन सीढ़ियों में लड़कियाँ होती थी,
4: सिर्फ लड़कियाँ होती थी
3: नहीं, लड़के भी होते थे उसमें, लड़के भी।
1: आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार स्टार और शुभ मंगल ज्यादा सावधान वाज द फर्स्ट हिंदी फिल्म टू पोर्ट्रे अ गे रोमांस बिटवीन टू लीडिंग मेन।
5: फोबिया,
6: डॉल भी बीमारी लगती है
7: और इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं।
8: हमने तुम्हारे लिए कुसुम को चुना है,
2: लड़की है।
9: तुझे क्या लगता है तेरे सातवें फेरे पर पिक्चर फ्रीज हो जाएगी? दी एंड, हैप्पी एंडिंग ना बेटा। सुहागरात से तेरा रोडी शुरू होगा। कर पाएगा टास्क, बनेगा रोडी।
2: बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम।
3: सुनो ना जी, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो?
2: बनूंगी मैं मदर इंडिया, मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है।
3: हाँ, बाप तो बैटरी से चलते हैं।
9: मेरा बाप ना लोहार है, तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बोल दूंगा तू मुझसे प्यार करता है।
3: मैं गलत फहमी हुई है।
0: पापा क्या गलत फहमी?
10: कार्तिक को जब मैंने पहली बार देखा था ना, मम्मी
0: पुतलियां आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी।
1: While the attempt was to break the mold and redefine what the macho Bollywood hero is, the script and the treatment of the

0: तो चेक लेफ्ट फैंस डिसअपॉइंटेड।
1: तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से
2: क्यों फर्क पड़ता है?
3: जो प्यार इनके दिमाग में फिट नहीं बैठता ना, उसको दबा देते हैं। पर ये हमारी लड़ाई है और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है।
4: हक तेरी तो।
0: However, the film songs were a big hit.

0: अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था।
1: 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए वो बचा रही थी।
2: शकुन बात्राज कपूर एंड सन्स पोस्टेड अ स्टेलर कास्ट इंक्लूडिंग ऋषि कपूर, रजत कपूर, रत्ना पाठक सिंह, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड फावद खान।
3: तुम किस तरह जानते हो सर? तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो?
4: लड़की ब्यूटीफुल
5: देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोल तू बंद मेरी कहो।
3: हम अर्जुन
6: टिया
3: आए।
6: तुम इतने परेशान क्यों हो अर्जुन?
3: मत पूछो, मेरा दिन इतना बकवास जा रहा है ना।
6: गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई?
3: भाई से।
6: भाई से?
3: भाई से नहीं, भाई से।
2: The film has some really intense scenes that portray the Desi family perfectly. Amidst all the fighting and drama that takes place in the film, Fawad's character comes out gay in an intense scene, and his coming out of the closet was presented with the perfect amount of compassion and empathy.
3: You're funny.
6: You're hot.

0: की होना इतना फेल गया। वैसे भी कुछ होता रहा
1: है। ऐसे ना बोले यार, जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
2: केक खा लिया, चॉकलेट खाना बंद, इस साल जीत के दिखा।
3: वो मेरा कीटो चल रहा है, कुछ तो रहम करो।
4: निकिता से बात की?
3: मैं ब्याह नहीं करवाना, मैं देख लूंगा अपने लड़की, पहले मुझे बनना है कुछ।
4: इतना बड़ा सांड बन गया, और की बनना है तू?
5: Another Ayushman Khurana film that was out of the ordinary was the 2021 film Chandigarh Khare Aashiqui, a daring attempt at showing a love story between a cross-functional athlete and a transwoman played beautifully by Vani Kapoor.
3: ये था थी दिमाग बदल गया मेरा, वो तो धोखा दिता है मैनू।
2: आउट एक सही था यार, नॉर्मल से भी
0: किया। कहां से आपने?
3: पैं कि कहां, जब पागल है तू, जहाँ से सब करते हैं वहां से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे तुम।

0: The gender bending romance drama managed to receive positive reviews from the audience and the critics alike.
1: तो एक बार मना कर दे से आपका खत्म.
2: पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया.

0: सर मैं ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था. इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस ऑफ कोर्स, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा जबरदस्ती आपके घर में घुसने का हक नहीं था.
1: मेरे खिलाफ साजिश थी. जनवरी लास्ट में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद यह घटना घट गई.
0: अब गए इसलिए.
1: देखो मैं यहाँ पर.
2: The film released in 2016 and received a standing ovation at its world premiere at the Busan Film Festival and won lead actor Manoj Bajpayee a Best Actor trophy as well.
3: आपको कमरा खाली कर रहा है. बैचलर आदमी नहीं चाहिए.
4: तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है?
3: अरे होता होगा.
1: तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़े जाते हो?
2: The intense Hansal Mehta film set in the city of Aligarh is based on the true story of Professor Mr. Ramachandra Siras at the Aligarh Muslim University, who was suspended due to his sexual orientation. He is then contacted by a journalist who is sympathetic to him and his case is taken up in court. The court rules in his favor and Siras' suspension is revoked. But before he can return to work, he is found dead.
1: An outsider. Urdu bolne wale shahar mein Marathi sikhata hoon. शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ.

0: है कभी ट्रू लव टाइम?
1: पंकज से शादी, मुसलमान से शादी, बनिहाल.com से शादी, सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में क्यों चलता है?
2: एंड देन वो सोनम कपूर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
3: डैडी आपको क्या लगता है इसका चक्कर इस लड़के के साथ में?
0: तेरे से ये उम्मीद नहीं थी।
1: पर मेरी उम्मीद पे खरे तो आप भी नहीं उतरे डैडी।
2: The tale of a woman hesitant to disclose her sexual orientation to her family. In spite of them pressurizing her to get married, the film was welcomed by the audience.
1: तुम पहले बंदे हो जिसे मैंने अपना सच बताया।

0: But even in times when society was not as accepting of interesting content in cinema, there was director Oni's My Brother Nikhil. The film rolled in theaters in 2005 and dealt with the taboo topic HIV and homosexuality ahead of its own time.
1: Any unsafe sexual practice? I mean, prostitutes?
2: What's wrong, doctor? आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
1: देखो तुम मुझे जो भी बताओगे मुझ तक ही रहेगा। तुम फ्रीली बात कर सकते हो निखिल। ठीक से सोचो।
2: No doctor, actually एक आध बार वो भी जिन्हें मैं जानता था, you know, girlfriends। पर प्रॉब्लम क्या है?
0: My Brother Nikhil is the touching story of a successful swimmer and his fear and frustration on being diagnosed with HIV.
3: तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो? तो ठीक है, मना कर दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। बी फर्म। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। क्या बात है निखिल?
0: Entertainment Bureau, India Today.
2: Love you a lot, princess.
3: Love you too, bye.

0: हमारे पास तीन ट्रेज हैं जिसको हमने हाई, मीडियम और लो रेट करा है डिपेंडिंग ऑन देयर माइक्रो प्लास्टिक लोड.
1: तो कुछ चीजें हैं जो हम एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए करते हैं, बट देन दे टर्न आउट टू बी नेस्टी फॉर अस. सो प्रोटीन शेकर्स एवरीवन डज वेरी हाई माइक्रोप्लास्टिक लोड इन इट.
0: एक सैशे ऑफ ग्रीन टी में कितना माइक्रोप्लास्टिक है?
1: सो 150 ml टी दैट यू ड्रिंक has billions and billions of microplastic particles.
0: ये जो पैकेट आ रहा है,
1: करेक्ट,
0: ये प्लास्टिक है, इससे क्या जा रहा है अंदर?
1: द एक्ट ऑफ कटिंग, दैट कटिंग रिलीजेस माइक्रोप्लास्टिक्स. अनलेस यू आर यूजिंग अ लेजर बीम टू कट इट. हम तो ऐसे या ऐसे फाड़ते हैं.
0: आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट यू हैव केप्ट दिस. ये तो स्टील है ना अंदर से?
1: अंदर से तो स्टील है, इसको पियोगे कैसे?
0: प्लास्टिक के कैप की वजह से.
1: और गर्म है ये. दिस इज अ सिपर फॉर हॉट टी एंड कॉफी. द हॉट टी और कॉफी इज पासिंग थ्रू दैट हॉट प्लास्टिक इनटू योर माउथ.
0: दिस इज अ कंसीलर, दिस इज अ लिपस्टिक.
1: अगर आप मेटल नहीं लगा रहे हो फेस पे तो आप प्लास्टिक ही लगा रहे हो.
0: वन सेकेंड. सो इसमें आ रहा है खाना, वो प्रॉब्लम है. इसमें गर्म हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है. पर ये तो लिखा हुआ है इसमें, देखिए इसमें लिखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ. इसमें नमक क्या कर रहा है? प्लास्टिक, और लेट मी गो स्टेप फर्दर एंड से माइक्रोप्लास्टिक्स. टुडे द रियलिटी इज दैट दे आर नॉट जस्ट अराउंड अस, दे आर इनसाइड अस. माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बीन फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, इन प्लेसेंटा, इन सीमन, इन आवर हार्ट, इन आवर लंग्स, इनसाइड आवर ब्रेन एज वेल.
1: So plastic production all over the world was around 3 billion tons in 1960s-70s. Now it is some 450 billion tons.
0: Wow.
1: There in the soil, it's there in the groundwater, it's there in our lakes, in our rivers. And the largest repository of microplastics is where all the water ends up, ocean.
0: ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें दो तरह के लोग हैं, ठीक है. एक जिनको प्लास्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है क्या है, सब जगह तो है, अब तो पहुंच ही गया है बॉडी के अंदर, क्या फर्क पड़ता है. और दूसरा कि भाई सब हटा दो, सब फियर मॉन्गरिंग. मैं तो जहां देख रही हूँ मुझे सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है. माइक्रोप्लास्टिक इज अ लिटिल बिट लाइक PM 2.5. एक बार घुस गया तो घुस गया, आप उसको हटा नहीं सकते अपनी बॉडी से. इज दैट ट्रू?
1: वो निकल नहीं सकता, सब चले जाएंगे, बस त्रिवेदी बचेगा.
0: You know, I don't want this conversation to become about कि हमने बड़ी बड़ी बातें करी और उनको कोई solution नहीं मिल पाया. Wood, is this okay? Simple one, a good copper bottle, good solution. This packet, they are saying this is India's first naturally degradable milk pouch that Mother Dairy has made. Is this good? Is this a claim that we should buy and vouch for? I have one. Do you know what this is? Does it filter out microplastic? Surely, एक balanced, nuanced तरीका है जिससे हम अपनी life का माइक्रोप्लास्टिक लोड कम कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते. हमारे पास तीन ट्रेज हैं जिसको हमने हाई, मीडियम और लो रेट करा है डिपेंडिंग ऑन देयर माइक्रोप्लास्टिक लोड, ठीक है. तो पहले गुड न्यूज से शुरू करें, बैड न्यूज से शुरू करें?
1: गुड न्यूज से चलो,
0: गुड न्यूज से शुरू करते हैं, ठीक है. तो पहले लो ट्रे की बात करते हैं, ठीक है. सो हियर व्हाट डू वी हैव ये बर्तन मांझने का स्पंज, द स्क्रब देयर, वी हैव फेस वॉश, राइट,
1: इसमें
0: अगेन अ स्क्रब. बट ये फेस वॉश के अंदर ये बहुत छोटी छोटी जो दिख रहे हैं,
1: दीज आर माइक्रो बीड्स.
0: दे एक्चुअली सेल इट सेइंग दैट दिस हैज माइक्रो बीड्स, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. इसके अंदर ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर भी वो थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स हैं,
1: करेक्ट.
0: एंड दिस वन, दिस इज माय किड्स बाथ टाइम
1: प्लेबुक.
0: हाँ, इससे ही शुरू करते हैं.
1: हाँ ठीक है. सो आई विल टेल यू अप फ्रंट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी यूज to classify these.
0: Haan.
1: Then everything will make more sense.
0: Okay.
1: And फिर जो चीजें यहाँ पे included नहीं है, they also our audience can figure out.
0: Thumb rules थोड़े से.
1: Thumb rules. So plastic, food and heat. ये combination जहाँ पे भी आ रहा है तो वो गड़बड़ है.
0: Plastic, food
1: and heat.
0: Heat. Okay.
1: ठीक है. So और कहीं पे भी plastic with heat, it will release a lot of microplastics.
0: Okay.
1: Then जब आप उसको मारोगे, पीटोगे, मतलब जब ज्यादा एजिटेशन होगा, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और फ्रिक्शन, और इवन विल हैव सम इंस्टेंसेस ऑफ एक्चुअली बीटिंग इट, देन दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ microplastics.
0: Okay.
1: When there is long-term exposure to liquids, especially oily and acidic liquids, then there will be a lot of leakage because those liquids, those things are designed to dissolve things, right? Acid is designed to dissolve something, and even oil is hydrophobic. It will interact much better with a plastic, which is not a very water-friendly substance.
0: So, you have told me five things. पहला है हीट, ये ज्यादातर लोग जानते हैं. अगर प्लास्टिक में हीट के साथ साथ ऑयल है तो प्रॉब्लम है, अगर एसिड है तो प्रॉब्लम है. फिर दूसरा हो जाता है कि आपके में अगर लॉन्ग टर्म ज्यादा देर तक रखा हुआ है प्लास्टिक के अंदर तो माइक्रोप्लास्टिक ब्लीड करेगा उसके अंदर, और अगर मूवमेंट है, बहुत शेक कर रहे हैं आप या कुछ कर रहे हैं, तब माइक्रोप्लास्टिक ब्लीड करेगा.
1: एब्सोल्युटली
0: बेसिकली पांच है,
1: पांच चीजें.
0: ओके,
1: so now all of this will make sense.
0: ठीक है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. पहले शुरू करते हैं, इसमें नमक क्या कर रहा है?
1: हाँ ना, नमक में प्लास्टिक है,
0: मतलब
1: आपके टूथपेस्ट में नमक है और आपके नमक में प्लास्टिक है.
0: सो
1: इंडिया का ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल जो पैकेज सॉल्ट है
0: हाँ.
1: वो कहाँ से आता है? लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और उससे सॉल्ट बनाते हैं. मोस्ट ऑफ दिस इज सी सॉल्ट. So one thing we have understood earlier, sea is the repository of plastics for the entire world.
0: Oh, yes, that's
1: so
0: how.
1: Anything that comes from sea has a lot of microplastics.
0: Yes.
1: Secondly, it is crystals. They're broken down in industrial processes. And industries mein, jitna humare ghar mein plastic hota hai, aajkal usse zyada industries mein use ho raha hai. So that plastic keeps getting mixed up in this.
0: नमक तो नहीं avoid कर सकते ना, इसका तो कोई switch भी नहीं है.
1: हाँ तो कम नमक use करो ना, health के लिए anyways अच्छा है. नमक थोड़ा कम use करें. And we keep saying that salt does have plastic, but in the amounts that we ingest it, it's not that big of a deal. That's why it is in medium. अगर इसको हम weight के proportion में रखेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा. But जितना हमको use करना चाहिए उस हिसाब से इट्स नॉट दैट मच.
0: ओके ओके. फॉर शुगर द स्टोरी इज डिफरेंट.
1: शुगर इज मोरल इज द सेम. अगेन द शुगर केन इज द प्लांट एंड दिस इज अ कॉन्सेंट्रेट. सो इफ देर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्लास्टिक इन द शुगर केन, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड दैट एंड देन अगेन इट इज प्रोसेस्ड इन एन इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग, फॉर मेकिंग इट लुक वाइट, फॉर एवरीथिंग. सो दैट इंडस्ट्रियल प्रोसेस add another level of microplastics. But again, our sugar intake should be less than 5% of our total calorie intake. So if your sugar intake is higher, that sugar is causing you more harm than the plastic inside it.
0: So main aapko isme batati hu mere liye revelation kya hai. जनरली अगर मैंने बोला होता कि सॉल्ट और शुगर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है, लोगों को लगता क्योंकि वो पैकेट के अंदर आता है. लोग ये नहीं समझ पाते कि वो पानी में है, इस वजह से आ रहा है.
1: पानी में है, सॉइल में.
0: ये बहुत बड़ा रेवलेशन है.
1: करेक्ट.
0: सो
1: तो इस जार में भी है तो भी वो उसमें माइक्रोप्लास्टिक तो है ही है.
0: हाँ, शुगर की बात हुई है, चाय भी ले ही आते हैं.
1: हाँ,
0: वी शुड जस्ट गेट देयर. सो दिस इज सम इंस्टेंट मसाला चाय, ये छोटा सा पैकेट दिखाने के लिए. तो अगेन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो पैकेट आ रहा है
1: करेक्ट,
0: ये प्लास्टिक है, इससे क्या जा रहा है अंदर?
1: सो पैकेट में जब तक वो सील्ड रहता है थोड़ा बहुत जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है. बट आप पैकेट तो डालोगे नहीं. द एक्ट ऑफ कटिंग एंड देन पुटिंग इट आउट, दैट कटिंग रिलीजेस माइक्रोप्लास्टिक्स.
0: अच्छा, क्योंकि आपने टेट्रा पैक मीडियम में रखवाया है, लेकिन ये जो कप्स है
1: ये हाई में है.
0: ये क्यों है?
1: क्योंकि इसमें तो आप गरम गरम चाय डाल रहे हो.
0: आई सी. आपने स्किन केयर की बात करी थी.
1: These are
0: a concealer, this is a lipstick.
1: Yeah, these are all waterproof kind of products.
0: Haan.
1: So the reason they are waterproof, anything is liquid proof, it's either metal or plastic.
0: Including
1: so
0: sunscreen.
1: Agar aap,
0: including sunscreen.
1: Agar aap metal nahi laga rahe ho face pe, to aap plastic hi laga rahe ho. Right? So anything which is waterproof is usually plastic, and uska to naam hi hai long lasting, so it has to be on the skin for a long time, and it will contain some things to make it stick to the skin, otherwise it will peel off.
0: ओ गॉड, हमारी सबसे बड़ी ट्रे, हमारी हाय माइक्रोप्लास्टिक लोड वाली जो ट्रे इस पर आते हैं, किससे शुरू करें? चलिए सबका फेवरेट प्रोटीन पाउडर शेकर से यूज करते हैं.
1: सो कुछ चीजें हैं जो हम एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए करते हैं, बट देन दे टर्न आउट टू बी नैस्टी फॉर अस. सो प्रोटीन शेकर्स एवरीवन डज, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट यू टेकन. इट हैज अ स्पाइरल इनसाइड इट टू मेक इट इजियर टू मूव
0: बिकॉज देयर इज अ पर्सन का है. ये मैं छोड़ देना इसके बाद.
1: सो Because that introduces more friction, easily mix होता है जब ये spiral अंदर होता है. But again, friction, agitation, trauma, and drinking directly after that.
0: Yeah.
1: So this does have a very high microplastic load in it, similar to another thing that we do to stay healthy,
0: which is green tea.
1: Green tea. So green tea, it goes into the hot water, stays in hot water, it releases billions of microplastic particles, and then we drink it, thinking that it's making us healthier. So green tea is good for us. There's no doubt about it. But green tea peena hai, to green tea ko loose leaf smell le, aur usko thode der soak kare. Actually, that experience is better. And उसके बाद उसको स्ट्रेन करें, प्लास्टिक स्ट्रेनर से नहीं करें.
0: प्लास्टिक छन्नी, हाँ, दैट
1: प्लास्टिक छन्नी
0: नहीं यूज करनी है. अच्छा, और क्या? अच्छा, थिंग्स आवर मदर्स लव सो मच,
1: या
0: कंटेनर्स.
1: सो कंटेनर्स आर इन हाई बिकॉज दीज आर मार्केटेड एज माइक्रोवेव सेफ,
0: बीपीए फ्री, माइक्रोवेव सेफ, ये सारे लेबल्स होते हैं, पर ये सब लीक कर रहे हैं प्लास्टिक.
1: सो बीपीए इज नॉट देयर इन दिस. बीपीए इज अ टॉक्सिन. So we're not getting direct toxins. We have to think of microplastics not as direct toxin, but as a contaminant that we want to avoid.
0: इसमें लिखा हुआ है microwave safe.
1: Correct. लिखने को कोई भी कुछ भी लिख सकता है ना.
0: तो one second. So इसमें आ रहा है खाना, वो problem है. इसमें गर्म हो रहा है, वो भी problem है. Basically ये डब्बे avoid करने हैं.
1: So इस डब्बे में आप मस्त बढ़िया करी मंगवा रहे हैं.
0: हाँ.
1: उसमें से आधी खा रहे हैं, बाकी फ्रिज में रख रहे हैं, जिसमें फैट भी है, जिसमें एसिड भी है, और आप उसको फ्रिज में रख भी रहे हैं, और फिर अगले दिन फिर इसी में उसको गर्म भी कर रहे हैं. सो एज सून एज पॉसिबल, इफ यू वांट टू स्टोर इट इन द फ्रिज, स्टोर इट इन मेटल, ग्लास, सिरेमिक. ये जो तीन चीजें हैं, दीज आर सेफ टू स्टोर. ग्लास एंड सिरेमिक आर सेफ टू माइक्रोवेव.
0: राइट. सी, देखिए, अब जैसे ये है, इसके अंदर कई सारी डिप्स आती हैं, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है रीयूजेबल फूड कंटेनर अबव 350 माइक्रॉन्स नाउ, एंड इट सेज माइक्रोवेव सेफ, एंड उसमें कुछ स्टिकर विकर भी लगा है कि ये सब बिल्कुल ठीक है. But you're saying all of this is...
1: And in general...
0: And इसके अंदर गर्म नहीं आएगा, तो इसके अंदर एसिड तो आएगा.
1: एसिड आएगा.
0: हाँ, if you order like a sushi or something, उसके साथ आएगा, soy will come or something else will come.
1: Yeah. So, in general, these black plastics are recycled plastics. And we don't know what they are made of. And there's another category of that.
0: Spoons.
1: Spoons and forks. These are... These generally contain a lot of flame retardants in them. जब वो मिक्स होता है तो मिक्स में बहुत सारे
0: flame retardants क्या होते हैं?
1: जो फ्लेम से बचने के लिए जो आपके इंजन के ऊपर कवर्स हैं, जो हमारे फायर प्रूफिंग के लिए यूज होते हैं, they are not food grade at all.
0: Okay.
1: And all of that is mixed in this. So these are in high because these are not food grade plastics. In general, try to avoid using black plastics because they don't have a source on it. See, every plastic na needs to contain this. They have this label. And I'm too old to read this
0: I'll
1: small
0: read
1: label. देखो बताना कितना जरूरी है ना कि मैं ओल्ड हूँ और ये पढ़ सकती हूँ.
0: नहीं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ तो बना हुआ है.
1: वो ट्रायंगल जो बना है, ट्रायंगल के अंदर क्या नंबर है?
0: 05 पीपी.
1: ट्रायंगल के अंदर, दैट रिसाइकल ट्रायंगल के अंदर क्या है?
0: 05.
1: सो दिस इज सपोज टू बी फूड ग्रेड. 05 इज सपोज टू बी फूड ग्रेड, बट वी डोंट नो अबाउट दिस मैन्युफैक्चरर, एंड वी नीड टू ट्रस्ट ओनली द ब्रांड्स दैट आर दैट वी ट्रस्ट. सो दिस these reusable ones will probably have 02 If it's not there, it
0: this
1: needs
0: is also
1: to be there.
0: Five. This is also five. Well, I will check.
1: These need to have either 02 or 05. It doesn't have a
0: this has
1: recycle
0: five.
1: Label. Yeah.
0: This has five.
1: So, O2 is for cold. जिसमें हम दाल चावल डब्बा में रखते हैं दे आर जनरली सेफ
0: अनकुक्ड दाल चावल
1: अनकुक्ड दाल चावल जो स्टोरेज में रहता है राइट दे

0: पी इज कंप्लीटली बैंड. इट कंटेन्स पॉलीस्टाइरिन स्टायरोफोम.
1: ओके
0: स्टायरोफोम शुड नॉट बी यूज्ड इन फूड.
1: ओके
0: सो मोस्ट ऑफ द गुड ब्रांड्स आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम स्टायरोफोम. गुड ग्रोसरीज आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम स्टायरोफोम. एंड स्टायरोफोम का एक प्रॉब्लम होता है, वो स्टायरोफोम नीचे ऊपर ये और बीच में कट फ्रूट्स विच आर सपोज टू कीप अस हेल्दी.
1: यस
0: राइट. सो थ्री स्टायरोफोम. पॉलीस्टायरीन होता है विच इज एक्चुअली टॉक्सिक. इट्स नॉट अबाउट माइक्रो प्लास्टिक, इट बिकम्स टॉक्सिक. फोर हैज अ फ्यू थिंग्स, समथिंग सम ऑफ विच आर गुड एंड सम आर नॉट गुड, बट इट्स जनरली नॉट यूज फॉर अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स. फाइव इज दीज माइक्रोवेव सेफ काइंड ऑफ थिंग्स. सो recycle with number 5 is microwave safe, but I advise not to keep anything with plastic in microwave. It is good for routine storage at room temperature, carrying your some snacks to your office. That's good. They are waterproof. They are
1: तो जो लोग कबाड़ी की तरह से इकट्ठा करते हैं और फिर बोलते हैं हम तो रीयूज कर रहे हैं, उनको करना है कि नहीं करना?
0: बिल्कुल नहीं करना है.
1: नहीं करना.
0: और ये रीयूज करेंगे स्क्रैच भी होंगे, दे विल रिलीज इवन मोर माइक्रोप्लास्टिक्स. दीज आर नॉट मेंट फॉर रीयूज, दीज आर मेंट फॉर सिंगल यूज एट बेस्ट.
1: ओके चलिए, शुड वी मूव टू द पैन? ओके
0: अगेन,
1: बहुत सारे रीजंस हैं नॉनस्टिक ना यूज करने के, एक और आप आज बता दीजिए.
0: तो मेन नॉनस्टिक से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नॉनस्टिक व्हेन यूज्ड वेल इज वेरी गुड. इट अलाउज अस टू कुक हेल्दी फूड इजीली, मेक इट क्रिस्पी विद लेस ऑयल, ऑल दोस थिंग्स. बट वो टेफ्लॉन जो कोटिंग है ना, वो हेल्दी इसलिए है. एक मैंने कहीं तो बोला था कि जब डोसा बनाते हैं तो डोसा तवे से क्यों चिपकता है? उसको प्यार नहीं होता है, उसको उसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है. टेफ्लॉन का प्रॉपर्टी है कि टेफ्लॉन डजंट रिएक्ट टू एनीथिंग. इट शुड नॉट बी हीटेड टू मच. टू मच हीट डैमेजेस द कोटिंग, टू मच स्क्रेपिंग डैमेजेस द कोटिंग, और उसके नीचे जो लेयर है That is not good for us.
1: Yeah, yeah.
0: So, ये तो आपने बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल दिखाया है जिसमें मेटल ऐसा बाहर निकल के नहीं आ रहा है. जनरली तो ये पूरा एरिया में मेटल दिखता है.
1: हाँ, पूरा रंग दिखने लगता है. हमने एक और पॉडकास्ट करा था कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने यही बात करी कि एक्चुअली ये लोगों को पता नहीं है और ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, पर हम इंडियन से हम पढ़ते नहीं है. ठीक है, तो ये जब आप कोई भी नॉन स्टिक लें, हमारी आदत क्या होती है, गैस चलाई, तवे को गर्म करा, फिर हमने चीजें डाली. नॉन स्टिक में ऑपोजिट करना है, आपको ठंडे पैन में चीजें डालनी है और फिर गैस ओपन करनी है. ये एक सिंपल सा स्विच है. एंड अगेन आई कीप गोइंग बैक टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, राइट? हम नहीं कह रहे हैं ये सब उठा के फेंक दो, हम कह रहे हैं यूज करो, कम यूज करो, माइंडफुली यूज करो,
0: माइंडफुली,
1: राइट? और यही लोगों को समझ में नहीं आता है.
0: गुस्सा नहीं निकालो, जिसके ऊपर निकालना है उस पे निकालो, इस पे मत निकालो.
1: सुबह सुबह भाई टिफिन भी बनना है, ऑफिस भी जाना है, थोड़ा मुश्किल है. लेकिन इस पर आते हैं, एवरीबॉडीज फेवरेट, वेरी नाइस. लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो चलिए हम कोरियन नूडल्स की, इंस्टेंट नूडल्स की भी बात कर ही लेते हैं. इसमें क्या प्रॉब्लम है?
0: तो इसमें नूडल्स हैं जिसमें आप गरम पानी डालेंगे,
1: हाँ,
0: फिर उसको 3 मिनट तक रहने देंगे, फिर नूडल्स विद कोरियन फ्लेवर्स विद सम प्लास्टिक्स हम एंजॉय करके खाएंगे.
1: लाइक यू सेड, बहुत सारे रीजन से आपको इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने चाहिए, पर एक दो बार अगर खा रहे हैं तो निकाल के दूसरे बर्तन में खा लें. बेसिकली इजी स्विच. क्लिंग फिल्म, ये तो सबको पता है, बट
0: क्लिंग फिल्म को इन जनरल ऑयली, वेट एंड हॉट चीजों पे यूज नहीं करना चाहिए. तो गरम गरम चपाती क्लिंग फिल्म में रोल करके लोग टिफिन में लेके जाते हैं. एल्यूमिनियम इज स्लाइटली बेटर, और नॉट यूजिंग एनीथिंग, जस्ट यूजिंग सम पेपर एंड पुटिंग इट इन
1: बटर पेपर
0: डब्बा. पेपर इज ओके. आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट बटर पेपर हैज. ट्रेडिशनल बटर पेपर डिड नॉट हैव एनी प्लास्टिक्स, बट आई डोंट नो वॉट बटर पेपर वी आर गेटिंग टूडे एंड वॉट इट हैज, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट.
1: ओके. अच्छा, कई बार ना क्लिंग क्यों इतना ईजिली होता है, क्यों मुझे मम्मी बोलेंगी कि अरे इतना आसान हो गई है जिंदगी, फ्रूट्स जो कटे हुए रह जाते हैं, पूरा कोई तरबूज तो घर पर खाता नहीं, वो कटे हुए जो रह जाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं. बट फ्रूट्स ऑल्सो, देयर ऑल्सो एसिडिक देन.
0: fruits are slightly acidic and we are storing it. So, वो cut

0: fruits in styrofoam and cling film is not a very good idea.
1: Okay. So ye sari cheeze to humne discuss kari. Ab mere paas na kuch aur sawal bhi hai. Ek aur tray hai. वो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हाई है लो है कि मीडियम है तो वो आपको दिखाते हैं फिर वील डू
0: अब हाँ? अब आप जवाब दोगे
1: हाँ ओके चलिए मेरा नॉलेज थोड़ा टेस्ट हो जाएगा ओके क्वेश्चंस ओके चलिए ओके लेट्स स्टार्ट ये मेरा ही सिपर है वेरी नाइसली जूही माय प्रोड्यूसर हैज पुट इट देयर ओके सो ये मुझे बताना ये हाई लो है कि मीडियम है
0: आप बताओ
1: ओके सो ये अंदर का पूरा क्योंकि स्टील है
0: हाँ.
1: पर इसका कैप इज प्लास्टिक एंड सो अगर मैं ये मीडियम में डालूंगी क्योंकि लो में डालूंगी बिना ढक्कन के अगर मैं सिर्फ ऐसे पी रही हूँ लेकिन क्योंकि ये घर से आएगा ऊपर नीचे होएगा तो मैं इसको मीडियम में डालती हूँ
0: ठीक है एंड अगर इसमें कोल्ड ले रहे हैं तो फिर भी आप लो में डाल सकते हैं
1: ओके
0: अगर इससे हॉट कॉफी या टी सिप कर रहे हैं तो फिर ये मीडियम में चला जाएगा
1: ओके लेट्स कम टू दिस ओह दिस इज आई मेड पॉप्सिकल्स लास्ट वीक इन दिस आई वाज टोल्ड आई बॉट इट ऑनलाइन थिंकिंग इट्स बीपीए फ्री बट आई थिंक बिकॉज इसमें इंटेंस कोल्ड में जाएगा और बाकी फ्रूट्स डालेंगे वो एसिडिक होंगे तो क्या ये
0: थोड़ा सा वो है बट generally don't freeze it too long in this don't use it for long term storage but in general just to make popsicles and get it out cold will generally suppress any leaching
1: yeah but fruit hoga na uske andar acid
0: thoda sa to exposure rahega isko low mein dal dijiye aapko thoda shanti bhi milegi
1: shanti mil gayi mujhe ha okay acha this is very interesting now plastic to इंटेरो जर्मिना के अंदर भी है और प्लास्टिक तो हमारी आई ड्रॉप्स में भी है तो डायरेक्टली अंदर जा रहा है और ये तो अंदर केमिकल्स हैं सो
0: मेडिकल ग्रेड जो पैकेजिंग होता है इट इज मेंट टू नॉट बी अफेक्टेड एंड यू विल सी दैट ईच काइंड ऑफ मेडिसिन विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक अराउंड इट सो दैट इज हाउ दे आर टेस्टेड एंड medical grade plastic even plastic syringes they are single use only plastic IV fluid bottles the cannulas they are designed for that they will not be toxic to us in any way
1: okay
0: right so medical grade plastic that's why for an equivalent amount of plastic they generally cost a little more and so buy from reputed brands and get these things from a good brand that you trust because it's not just the plastic you need to trust you also need to trust the medicine inside it
1: yeah that's important
0: get it from a good brand and you can be reasonably sure that plastic is not going to harm you
1: इंटरनेट पे बहुत सारी अफवाहें बढ़ती रहती हैं लेकिन इंटरनेट की नहीं डॉक्टर वेरीफाइड न्यूज सुनिए बिकॉज दैट इज व्हाट विल कीप यू गोइंग थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग

यंगेस्ट कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री जहां यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और इसीलिए आज देश को आप सब पे भरोसा है कि आपका एक एक कदम देश को रोजाना आगे लेके जाएगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का देश, यदि आप आगे बढ़ते हैं,

0: नहीं, अनुमति क्या लेने की, अनुमति लेटर दिया तो अनुमति देनी चाहिए। गांधी जी के रास्ते पर वो मार्ग पर वो आंदोलन हो रहा है, शांति से आंदोलन हो रहा है, कोई शस्त्र लेकर तो आंदोलन नहीं हो रहा है। तो जब अपनी आवाज है, या डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें संविधान पर विश्वास रखे हर कोई बंदा जीता है, तो उसको आंदोलन करने का, विचार स्वातंत्र जो होता है, फ्रीडम है, बोलने का फ्रीडम है इस देश में, सरकार के विरुद्ध बोलने का फ्रीडम है।
1: सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, उसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन नीट के मामले में, सीबीएसई के मामले में जो बात, जो महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि वो कौन है क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण बात ये है कि देश के अंदर युवाओं में जो भारी व्यवस्था को लेकर जो भारी आक्रोश है वो उसमें प्रदर्शित हो रहा है।

0: इंसिडेंट हुआ था, करीब 9 बजे की बात है। तो 9 बजे में पहले तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें। तो जब तक हम पहुंचे थे तो तब तक ऑलमोस्ट मेनली तो जो हमने डेड बॉडी आज निकाली है डेड थी।
1: और देख लो, और है
2: थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
3: जैसे ये आग लगा है, जैसे इन्होंने इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई।
4: अरे मत जाओ अभी, मत जाओ।
5: बीस लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया था गद्दों के जरिए और सीढ़ियों के जरिए।
6: पूरे अंदर ग्राउंड में सबसे ज्यादा आग लगा हुआ था, इसीलिए आदमी जो थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी थे वो तो कूद गए खिड़की से, और जो कमजोर होगा अंदर में रहते हुए होटल में वो बच पर नहीं पाए।
7: The fire that started in this building, this accommodation, which had a bread and breakfast scheme, killed 21 people. It was not an accommodation. It was a funeral pyre. It was not an accident. This was a man-made tragedy. The people living here were chosen this as their accommodation perhaps after looking into the website and the social media pages of this particular bed and breakfast scheme accommodation, perhaps thought that they would have had a comfortable stay here. What they didn't know is that this is going to be their last stay ever in any such accommodation. They were actually here in Delhi to take care of their loved ones, many of them medical tourists who were getting treatment in a private hospital just in the vicinity. Little did they realize that they were simply sitting ducks. This place was not designed to offer them comfort or proximity to the hospital. This place was actually designed to kill. The people living here were sitting ducks.
8: हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा।
9: हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज।
10: बहुत ही अच्छे व्यक्ति, धन्य ही थे वो और सबसे मिलनसार। और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी तक। ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ होगी।
11: दुर्घटना में मेरे एक छोटे मौसा जी जो अजमेर रहते हैं, वो मौसा जी और मौसी की भी डेथ हो गई और मेरे मामा जी के लड़के जो किशनगढ़ रहते हैं उनकी भी डेथ हो गई। टोटल 8 लोग हमारे परिवार से इस दुर्घटना में डेथ हो चुके हैं।
12: जब पांच परिवार के इसी घर के सेक्टर 46 के लोग वहां पे थे तो वजह क्या थी कि इतने सारे लोग एक साथ वहां रुके हुए?
11: एक्चुअली मेरे मौसा जी का ट्रीटमेंट साकेत हॉस्पिटल में चल रहा था और जो मेरे मौसी का परिवार है जो गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए साकेत डेली अप डाउन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने साकेत हॉस्पिटल के सामने ही होटल के अंदर रूम लिए थे। तो जो लोग किशनगढ़ से अजमेर से आए थे मिलने के लिए वो लोग भी उसी होटल में चले गए और सबका साथ प्लान था कि वहीं से इकट्ठे होकर सब लोग साकेत हॉस्पिटल जाएंगे।
7: And what's really left behind in the narrow lanes of Hazrani where this horrific incident took place are stories now that really are a silver lining in the very dark clouds. Stories of heroism, sheer bravery and most importantly of humanity, of the locals here who rose to the occasion, did what they could, used bed sheets, mattresses, ropes to bring down the people from the building that was blazing, from the inferno, help them, encourage them to step out, to jump in fact from the building, from the windows, so that they could save their lives even if they would have been injured. And that's what exactly happened. Many of these locals administered CPR, lot of them in fact helped take the patients to the nearby Max Hospital, helping save many, many lives. This tragedy would have been far, far worse.

0: stands out here are a dozen plus lapses. This was actually a bed and breakfast scheme accommodation and had the permission for 6 rooms. Imagine there were 25 rooms that were functioning out of this place. The owner, who's now been, in fact, arrested by the police, has clearly said that he never really obtained a fire no objection certificate. There was no paperwork that was done essentially by the MCED. So how was this place really functioning for so many months at a stretch is a big question. They were advertising. They were doing publicity campaigns on social media, asking people to, in fact, use their accommodation. How was all of this being done in such a brazen fashion? That is the big question here. There was a kitchenette in several rooms. Again, a violation. Rooms within the basement. What actually is allowed for a bed and breakfast scheme accommodation is a small eatery that can offer snacks, but a proper restaurant was running right out of this accommodation.
1: Anjum ji, सबसे बड़ी चश्मदी इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
2: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है,
1: ठीक है।
2: तो सुबह मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है,
1: ठीक है।
2: तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं,
1: ठीक है।
2: देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा। तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसी, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती।
1: अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे
2: अंदर? आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
1: दिखाइए, फोर्थ फ्लोर
2: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है। यहाँ से भी लोग इतना गिरे, ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है, जो अंदर थे इनके,
1: अच्छा,
2: उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं। कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी।
1: एक बात बताइए, एनओसी मिल सकती इस होटल को?
2: इस होटल को एनओसी इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है, इन्होंने 25-25 कमरे इसमें बना रखे हैं। कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया। एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है।
0: This horrific incident from the national capital has once again put the spotlight on two things that the Delhi government has done very recently. One is tweaking of its policies regarding the bed and breakfast schemes. It's a draft bed and breakfast schemes that seems to be relaxing the norms for setups like these. The second one has got to do with fire safety norms, essentially enabling private players to come in to check for fire safety norms enforcement in accommodations of this kind and many other commercial accommodations. On the 27th of May, the government proposed a new fire safety framework under which building owners can obtain fire clearances through private fire auditors rather than relying solely on inspections by Delhi Fire Services. The same week, the government announced the draft bed and breakfast policy by allowing residential properties with up to 8 rooms and 16 beds to operate as B&B units, introducing online registration and self-certification. This was in stark contrast to the 2007 bed and breakfast framework, which relied very heavily on inspections and departmental scrutiny before approvals. The suggested bed and breakfast scheme has now been withdrawn. Fires blazing through buildings, hospitals, ICU and NICU units are unfortunately not uncommon. Several instances have been reported in the past, including the 2020 fire at a neonatal center in Delhi that charred newborn babies alive.
3: My
0: We are in Delhi's Green Park area, and right behind me is the ill-fated Upahar Cinema that caught fire 30 years ago, killing 59 people. This cinema theater in ruins now stands testimony and is a grim reminder of how building violations continue, not just in Delhi, but in many parts of the country, and how the high and mighty often get away. It's been 30 years since this tragedy that killed so many people. The big question is, what have we learned since? As these incidents continue, as deaths are reported, not just infrequently, but time and again, like in the case of the tragedy we've seen in the Hosrani area of Delhi.
3: हम इस वक्त मालवीय नगर के हौजरानी के एक फ्लोरिश इन रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद है होटल में, और आपको हम ये दिखा दें कि फिलहाल अब यहाँ पर रिसेप्शन पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अटेंडेंट जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस फ्लोरिश इन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जो लाइसेंस की परमिशन दी गई है वो 6 रूम की इजाज़त जो है वो दी गई है। 3 रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 रूम सेकंड फ्लोर पर, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। अब आपको ग्राउंड रियलिटी चेक कराते हैं, फ्लोर पर कितने रूम्स हैं ये आप चेक कीजिए। रूम नंबर 101, इसके बाद रूम नंबर 102 यानी 2 कमरे, रूम नंबर 03 यानी 3 कमरों तक की इजाज़त है। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक कमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक कमरा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर नज़र आएगा, एक कमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। हर फ्लोर पर इसी तरीके का आलम जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर भी देखेगा, एक कमरा यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर गेस्ट नज़र आएंगे, और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से रूम जो है वो नज़र आएंगे। यानी हर फ्लोर पे आपको 4 से 5 कमरे जो है वो नज़र आएंगे, 5 कमरे। बेसमेंट में भी आपको जो है तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर भी जो है वो कमरे जो है वो आपको नज़र आएंगे, पेंट्री नज़र आएंगी। कि ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है MCD की, दिल्ली सरकार की, टूरिज़्म विभाग की जो इनके इजाज़त देता है, फायर डिपार्टमेंट की जो इस तरीके से अगर फायर का इंसिडेंट हो जाए तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फायर की, ये तमाम लोगों की, विभागों की जिम्मेदारी है, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है।
4: तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
5: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगे सारी चीज़।
4: अच्छा ये बताएं कि एंट्री एक्टिव को लेकर के फायर NOC भी नहीं है?
5: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एंट्री है या नहीं है।
4: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या MCD इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
5: जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है, MCD अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करती है।
0: 21 people dead, 8 members of an entire family have been killed. Well, these aren't just numbers. These were real people, somebody's mother, somebody's father, somebody's daughter, a loved one, a neighbor, a friend. They aren't just statistics. The Hosrani tragedy is also something that brings back a horrific sense of deja vu for all reporters who've been covering this. It's also a reminder that perhaps as much as we hope for things to change, things only remain the same. Make no mistake, this is callous criminal negligence, a man-made tragedy. There's a deep sense of frustration

0: In these 12 years, Linear India has transformed into Digital India, revolutionizing how Indians transact. Unified Payment Interface, or UPI, the world's most advanced digital payment system, now covers every corner of India. In December 2025 alone, UPI processed a record 21.63 billion transactions worth 27.97 trillion rupees. In financial year 2025, UPI captured 83.7% of all digital transactions, processing 261 trillion rupees. Bihari started to use UPI to receive payment at his tea stall in Patna when the COVID pandemic hit the world. Social distancing forced people to skip cash and opt more and more for digital cashless payment.
1: No digital कोई देता नहीं था और हम लोग ले ही नहीं पाते थे. वो तो खुदरा का झमेला उस गरीब ही था. अब तो हो गया कि कम से कम डिजिटल चल रहा है, तो ये तो है कि किसी के पास पैकेट में पैसा रहे ना रहे, मोबाइल से काम हो जा रहा है। कोरोना के बाद समझिए कि पैसा आदमी यूज करना ही छोड़ दिया है, मतलब मोबाइल से ही ज़्यादा यूज करता है.
2: आज आपको कोई अगर नोट दे देता है 10 रुपए की चाय पिया और अगर 50-100 रुपए का नोट दिया तो खुला होता है आप लोग के?
1: नहीं, बहुत दिक्कत होता है खुला के लिए. तो समझिए कि अंतिम में हम लोग को पैसा छोड़ना पड़ जाता है.
2: ये हालत हो गया है
1: अभी.
2: एक तो और बताइए, जैसे बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी या है कि नहीं, आप लोग का पेमेंट होता है, अटक जाता है? ऐसा तो नहीं हो जाता कि अगर पेमेंट हुआ फंस गया, नेट नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसा तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि जब भी होता है तो अपना, इसीलिए मैंने दो बॉक्स रख लिए हैं. कम से कम दो बॉक्स में ये है अंदाजा कि आपका जैसे कि पेमेंट आ गया तो वो बोलेगा, अगर नहीं आया तो बोलेगा ही नहीं.
2: I've just had my cup of tea and now I need to make payment for this. Bihari ji, दो कप चाय का कितना हो गया?
1: दो कप चाय का 24 रुपए हो गए.
2: चलिए मैं, let me now make this payment through my digital platform here. चलिए, तो मैंने 24 रुपए का पेमेंट कर दिया डिजिटल से. मिल गया आपको?
1: बिल्कुल मिल गया सर.
2: मिल गया है? हाँ. तो ये आपको लगता है बड़ा इजी है, बड़ा आसान है ये तरीका पेमेंट का?
1: हाँ, ये बहुत इजी है. और दूसरी बात के टेंशन नहीं रहता खुदरा का, नहीं तो 100 रुपया का नोट अगर आदमी दे देता है तो 10 दुकान हमको भजाने में देरी होता है.
2: एक कप चाय 12 रुपया का, 24 रुपया का, फिर खुदरे में दिक्कत.
1: 24 रुपया में तो खास करके ज्यादा दिक्कत हो जाती है.
2: There you see, I've just had a cup of tea here and 24 rupees that I've paid for 2 cups of tea, and I've made this payment through this digital platform. And Bihari, this tea seller, is also happy with the fact that he doesn't have to worry about giving change if somebody gives a currency here, and that is why we are seeing in India, especially in states like Bihar, in urban and rural parts also, digital penetration has increased extensively.
0: From Patna to Jaipur, life works seamlessly on UPI.
3: In the new digitized India, one thing has grown in leaps and bounds. It is the UPI payment, or payments made online. Millions of transactions get made through the use of phones which people carry, and make payments for traveling in buses, for paying to vendors. And we are right now in a local bus on an arterial route in Jaipur, and you can see all of these people who are traveling. In fact, most of the people carry phones with them and can make use of online transactions to carry the payment for which they want to make for the travel that they do. Kya naam hai aapka?
4: Rajkumar.
3: राजकुमार, ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप?
4: जी.
3: रोज कितने पेमेंट्स करते होगे ऑनलाइन?
4: जी ज़्यादा नहीं, 100-200-500
3: हो जाती हैं, 100-200-500 की. और आप ये फ़ोन दिखा रहे थे, आपने आज की, ये आज की पेमेंट्स है क्या आपकी?
4: जी ये जो है किया है अभी, ऑनलाइन लिए हैं पेमेंट.
3: और बस में ट्रैवल करने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट?
4: नहीं नहीं, बस में तो कैश देते हैं।
3: वैसे करते हो आप ऑनलाइन?
4: जी।
3: Well, in the bus that we are traveling right now, this is a local bus which plies on the Tonk Road in Jaipur city. And I also do have the conductor with me. Online transactions, aap log accept karte hain bus mein?
5: Haan, karte hain sir.
3: Aur kitni, matlab, jo aapki total transactions hoti hain, uski kitni percentage online hoti hogi?
5: Online koi fix nahi hai. कभी कितना आ जाता है, कभी 200 आ जाता है, कभी 300 आ जाता है, कभी 500 आ जाता है।
3: पर वो ऑप्शन आप लोग देते हैं पैसेंजर्स को कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके?
5: कर सकते हैं।
3: द ड्राइवर इज राइट नाउ आल्सो ओवर हियर। क्या नाम है आपका सर?
6: मोहनेंद्र सिंह।
3: आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं?
6: हाँ।
3: और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ऐसे कितने पैसेंजर्स होते होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे?
6: ऐसे एक चक्कर लगाते हैं उसमें कम से कम 10-12 लोग तो आते हैं।
3: तो आपको लगता है जब अगर मान लीजिए छुट्टे पैसे नहीं हो वो कन्वीनियंट रहता है ऑनलाइन पेमेंट करना?
6: करवा लेते हैं, करते हैं।
3: तो जो फेयर है वो 10-15 रुपए का ही होता है?
5: 10-15-20
3: ऑनलाइन करते हैं पेमेंट को। Well, so this is one thing which is very convenient, because if someone is not carrying a short change or cash with them, then online payment option is one option which is readily available and is made use of. And in fact, this is one mode of payment which has grown in leaps and bounds in the last 12 years during the Narendra Modi government's tenure at the center.
0: The local shop selling essential grocery and tea also thrives on cashless payment.
3: This is a tea shop where every day hundreds of people come to buy tea, various products from this shop. The shop owner is with me right now. Kya naam hai aapka?
7: Babulal Saini.
3: Babulal ji, ye bataye ki kitne log aate honge rozana jo online ke zariye UPI ke zariye payment karte chahiye?
7: 300 aate hain, 300 ke lagbhag aate hain.
3: वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, फायदे की चीज है? मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह आपने QR कोड।
7: ऑनलाइन से तो ये फायदा है, भीड़ नहीं लगती, फटाफट UPI से पैसे हो जाता है, खुले देने लेने के झंझट खत्म हो जाती है।
8: एक चीज तो ये हो जाती है कि अपना एक तो जो जेब कतरे होते थे पहले, उनका काम थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा सा सेफली पेमेंट हो जाता है। हाँ, अटक भी जाते हैं कई बार।
0: फार फ्रॉम द बसलिंग सिटी इन स्मॉल टाउन मुजफ्फरपुर इन बिहार, vegetable vendors to small businesses all run on UPI.
9: 100 रुपया का सब्जी लेते हैं तो मोबाइल से मार के अपना चले जाते हैं,
10: फायदा हुआ है।
11: पहले पैसा लेके उधार पर ले जाता, पैसा वही पर मारता है मोबाइल से।
0: चंदौली इन उत्तर प्रदेश, नियरली ऑल वेंडर्स इन दिस विलेज एक्सेप्ट UPI पेमेंट।
12: 1.5 साल से UPI यूज कर रहे हैं, इससे ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है बहुत आसान हो गया है, इससे हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।
13: पेमेंट लेने में दिक्कत नहीं होती?
12: नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती।
13: ग्राहकों को भी सुविधा होती है?
12: बहुत ज्यादा, घर से निकल रहे मोबाइल लेकर के हो जा रहा है उनका काम, जो भी लेना चाहते हैं वो सब ले देकर चले जाते हैं।
0: More than 400 kilometers from Narayanpur in Madhya Pradesh's Sioni, digital payment is a normal and accepted form of transaction for daily needs.
14: 4,32 rupees
15: phone paper प्राप्त। UPI आने से हम लोगों को चिल्लर की समस्या खत्म हो गई और पैसे बार बार घर आना पड़ता था, तो वो घर आने का भी मामला खत्म हो गया है। लोग अब अगर 11 रुपए भी देते तो हमसे 11 रुपए भी ले लेते हैं। पहले होता यह था कि भाई 10 रुपए देते थे, अब हम उनसे 11 रुपए भी ले लेते हैं और पूरा पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इससे ये फायदा है, लगभग 60% हमारा UPI से होता है, 40% हमारा कैश होता है।
0: From metro cities to remote villages, UPI has become the backbone of India's digital economy. It's now expanding to 20 nations worldwide.

0: This train has also met the real-life need of the valley. Perishable goods like fruits and vegetables today don't have to wait in long queues of trucks to reach the rest of India. Like this cherry farmer, from the farm, they reach the table via train.
1: बहुत इसमें हम बहुत मशहूर है मरकजी गवर्नमेंट और रेलवे हुकाम के कि उन्होंने ट्रेन के हम फैसिलिटी हमें मुहैया की है और हमारी शहरी इस साल भी जा रही है बाई ट्रेन चूंकि श्रीनगर से अभी डायरेक्ट बम्बई नहीं जाए कोई ट्रेन हम यहां से कटरा भेज रहे हैं कटरा से बाई ट्रेन नहीं जाता है हमारा बम्बई माल और सेफ भी पहुंच जाता है जल्द भी पहुंच जाता है और सस्ते रेट में भी पहुंच जाता है
2: डेकेड से ये यहां के लोगों का ख्वाब था चाहे पैसेंजर एस्पेक्ट हो लेकिन कमर्शियल क्योंकि यहां की ज्यादातर चीजें सेब चेरी एप्रिकॉट ये ऐसे फल हैं जो ज्यादा सड़क में फंस गए तो पूरे साल की मेहनत एक ग्रोवर की बर्बाद हो जाती है तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है सरकार की कश्मीर को लेके वो है ट्रेन सर्विस जो कि कनेक्ट किया है अब कश्मीर को पूरे देश से
0: द दल्ली रजहरा रावघाट जगदालपुर रेल प्रोजेक्ट is one of Chhattisgarh's most important and long-awaited railway projects. Sanctioned in 1995, the 235-kilometer rail corridor was envisioned to connect the remote Bastar region with the rest of the state and the national railway network. Three decades later, while work is going on, it has become partially operational.
3: प्रोजेक्ट 85% कंप्लीट हो गया है खाली एक लास्ट सेक्शन है 17 किलोमीटर का केवटी से रावघाट ये इस पे काम चल रहा है और वो भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा इसके अलावा रावघाट से जगदलपुर के लिए एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिसमें अभी लैंड एक्विजिशन प्रोग्रेस में
0: द प्रोजेक्ट इज क्रूशियल नॉट ओनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयरन ओर फ्रॉम द रावघाट माइंस बट ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग पैसेंजर कनेक्टिविटी For the first time, districts like Kanker, Narayanpur and Bastar are being linked through a modern rail network, bringing better access to trade, education, healthcare and tourism.
4: Ravghat Railway Project. This entire project is 235 kilometer of railway line. Instead of waiting for the entire project to be completed, the operations are extended after every stretch of 15 kilometers is completed and cleared for use for passengers. This phased approach allows communities, industries and logistics to benefit from its connectivity much earlier than the anticipated time.
0: Udaan has served over 1 crore passengers. Inaugurating 425 new routes and 58 airports in its first 5 years.
5: 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और 25 दिसंबर से इस एयरपोर्ट से फ्लाइटों की उड़ान शुरू कर दी गई लगभग 20,000 करोड़ की लागत से पहले चरण में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है इस एयरपोर्ट के बन जाने से कोकण मुंबई और पुणे के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं
0: द ऑपरेशनल नवी मुंबई एयरपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली ईज्ड मुंबईज एयर ट्रैफिक कंजेशन जनरेटेड लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्टेड रीजनल रियल एस्टेट ग्रोथ किशनगढ़ एयरपोर्ट हैज बूस्टेड अजमेर्स टूरिज्म Simplified pilgrimage to Pushkar and the Dargah and accelerated the region's massive marble trade.
6: Kishangarh khud ek vishv prasiddh marble mandi hai जहाँ पे व्यापार और रोजगार दोनों ही बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर रहे हैं और पूर्व में उनके पास साधन इतने नहीं हुआ करते थे लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद अब जो साधन है और व्यापार और रोजगार वो उसकी जो वृद्धि है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है
7: किशनगढ़ के एयरपोर्ट बनने से आम नागरिकों को जो टूरिस्ट आता था अजमेर के अंदर चाहे पुष्कर हो चाहे मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे दरगाह हो सबके जायरीन सब यात्री आगे से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं
8: जो एयरपोर्ट की सौगात है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए हो जाती है न सिर्फ इससे एक यातायात सुगम हुआ है जबकि पूरे पर्यटन के अंदर इसको बढ़ावा मिला है टूरिज्म को बढ़ावा मिला अजमेर आर्थिक रूप से इससे और अधिक सशक्त हुआ है
0: मोपा एयरपोर्ट हैज ड्रास्टिकली बूस्टेड गोवास टूरिज्म Enhanced international cargo logistics and catalyzed major commercial real estate growth in North Goa.
9: This airport is pretty nice. Way jitter than the W one right now.
10: The earlier airport was very far away, and this is the best looking which we have in Goa.
0: Noida International Airport, coming up in Jewar of Uttar Pradesh, will dramatically decongest Delhi's airspace, create massive employment, drive global logistics, and transform Western Uttar Pradesh's real estate. This Udaan, with 90 airports in 12 years, prepares to grow into a network of 220 airports mapping the country. Make in India and Atmanirbhar Bharat have transformed India into a manufacturing hub.

0: Defence exports skyrocketed from 686 crore rupees in 2014 to 23,622 crore rupees in financial year 2025. A 34-fold increase. Annual defence production reached a record 1,50,590 crore in financial year 2025, up 18% from the previous year. India now has 1.57 lakh recognized startups and 125 unicorns valued at $366 billion. The drone sector has witnessed a 34.4% surge, with 526 drone startups raising $745 million.
1: हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं।
0: बी आर्म मेडिकल टेक्नोलॉजीज, अ तमिलनाडु बेस्ड हेल्थ केयर D2C स्टार्टअप that focuses on developing innovative and accessible healthcare and wellness consumer products. Women are its main focus.
2: We expanded our product portfolio from puberty to menopause, supporting womanhood through every stage. So to do all this, we actually had the initial support and initial support from central government through a nationalized bank, actually through the Women Entrepreneurship Scheme. One of the nationalized bank's manager called us saying that she wants to give us a loan, and that's how we got the loan through central government scheme and got our machineries and kickstarted our segment into the women's wellness space.
0: Founded with a vision of making healthcare products more accessible and conversation friendly, BeArm has been steadily growing its presence through digital first healthcare solutions and awareness driven initiatives. Lisa Bharadwaj from Ludhiana in Punjab was looking for investment after she completed her studies to start her own business.
3: जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन होता था, एवरीबडी वॉज लाइक कि आपके पास कोलेट्रल नहीं है, गोल्ड नहीं है, लैंड नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। देन आई गॉट टू नो सम गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग सिस्टम ने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ पे कोलेट्रल फ्री फंडिंग भी मिल जाती है अगर आप स्टार्टअप करने के लिए आपका विजन अच्छा है, आप गोल ओरिएंटेड हो।
0: स्टार्टअप्स इन दिस रीजन हैव गवर्नमेंट स्कीम्स टू बैक देम अप।
4: गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं स्टार्टअप को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट वाली स्कीम्स हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इस साल में जो DPIIT के अंडर जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उसको उन्होंने जो फंडिंग को 20 करोड़ रुपए तक का कर दिया, तो उससे जो स्टार्टअप को काफ़ी सपोर्ट मिलती है।
5: हम पिछले 15 साल से इस बिजनेस में हैं, एंड पहले बहुत मुश्किल होती थी डिजिटलाइजेशन से पहले की फंडिंग को उठाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, वी रियली प्रेज बिजनेसमैन बहुत ईज में है आज की डेट में काम करने के लिए, कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप फंडिंग एक सेकंड्स में उठा सकते हैं मार्केट से।
0: आनंद इन गुजरात इज नोन फॉर द मिल्क रेवोल्यूशन। इट इज द सिटी फ्रॉम वेयर अ स्टार्टअप लेड बाय श्वेता प्रजापति इज ड्रीमिंग बिग। द स्टार्टअप सर्बोटेक इज अ न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी। Using brain-computer interface and emotionally intelligent AI to improve focus, emotional balance, and cognitive strength, it has developed Neuroam. It pairs a wearable brain band with a mobile app to deliver real-time brain insights and gamified mental training.
6: Government is very much actively working on a startup, or har ek हेल्प करते हैं, स्पेशली फाइनेंस. सो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट गुजरात मोदी सरकार की ग्रांट्स है जो खुद मैंने भी ली है, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है गुजरात के जिन्होंने लिया हुए है. जैसे मैंने स्टार्ट किया था SSIP जो स्टूडेंट स्टार्टअप को मिलता है, जो 2.5 से शुरू होती है और उसके अप टू 1 CR 2 CR तक ग्रांट्स अवेलेबल है फॉर द स्टार्टअप.
0: Sarvajit Singh Virk co-founded Finvasia with his brother Tejinder Singh Virk in 2009. Then he moved back North America to Punjab. Today, Finvasia Group deals with artificial intelligence to make it accessible to Indians with technology-driven solutions.
7: I certainly feel that the incubation system, which is more prominent in a good leading universities, the STPI ecosystem, all that really supports the people who are willing to bet on their time, but probably do not have money to innovate. And this is where I feel that the government support always mitigates some level of risk for the first generation entrepreneurs, even like us or from a startups, who are in tier 2, tier 3 city.
0: Isha Jhawar is a foodie, so she developed food with authentic flavors for all who live on their own away from home. Her startup, Repeat Good, based out of Raipur, is a beneficiary of the government's Make in India scheme.
8: 12 saal mein desh ka bahut vikas hua hai. मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया गया है, तो हम सबको भी एक सोच आई है कि हम बाहर की चीजें अवॉइड करें, खुद जो हमें जरूरत है वो इंडिया में बनाएं और उसे विदेश तक लेके जाएं. तो ये सोच अब हर घर तक पहुंची है, ये अपने आप में बहुत काबिल-ए-तारीफ है. ऐसी ही सोच ने हमें भी, मुझे भी प्रेरणा दी है कि मैं अपना कुछ बनाऊं, मैं अपने प्रोडक्ट बनाऊं, और अब ये पूरे देश में तो जा ही रहे हैं, इन्हें विदेश तक भी पहुंचा.
0: Young India is boldly striving ahead to make the country Atmanirbhar.

0: The government's poverty-centric agenda has lifted 250 million people out of poverty in 10 years.
1: देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has provided 10.33 crore LPG connections with 32.94 crore active domestic LPG consumers nationwide. Direct benefit transfer has streamlined welfare delivery, transferring over 44 lakh crore directly to beneficiaries' accounts as of May 2025. Saving the exchequer 3.48 lakh crore rupees by eliminating middlemen.
2: मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे, और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं।
0: द सिस्टम रिमूव्ड 4.23 करोड़ फेक एलपीजी कनेक्शंस। This has brought smiles in kitchens across the country. Free LPG connection in BPL families in Saharsa, Bihar is nothing short of bounty for the lady of the house.
3: पहले जैसे कि चूल्हा पे खाना बनाते थे, बच्चा को भी टिफिन नहीं दे सकते थे, जब से ही जो उजाला गैस हमको मिला है तब से बहुत ही सुविधा है, जो मैं कि बच्चा सबको भी स्कूल भेज देते हैं, हम भी ड्यूटी पे चले जाते हैं।
4: ज्यादा पड़ता था धुआं से, बहुत परेशानी होती थी, लकड़ी भी तो टाइम से उतना नहीं हो पाता था। हम लोग को बहुत राहत मिला है जब से उजाला गैस मिला है, टाइम से बच्चे को खाना दे पाते हैं, नहीं तो पहले लकड़ी पे बनाना पड़ता था, चुन चुन के लाना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था।
0: चेतन ठाकुर लिव्स इन अ सिंपल मड हाउस इन सुंदरपुरा विलेज इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। द ब्लू फ्लेम ऑफ एन एलपीजी सिलेंडर इज द बिगेस्ट रिलीफ for his family of 11.
5: પહેલા કે લાકડા સળગાવવાનું બહુ તકલીફ પડતી હતી, ચોમાં બધા લાકડા પલળી જાય એટલે કસાય કોમમાં ના આવે, એટલે પછી ગેસનું ફોર્મ ભરાઈને આપણે ગેસ કનેક્શન લીધું એટલે થોડી રાહત મળી।
0: પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના લોન્ચ્ડ ઇન 2016 પ્રોવાઇડ્સ ક્લીન કુકિંગ ફ્યુલ ટુ પૂઅર હાઉસહોલ્ડ્સ, transforming the lives of women in Golagudem village of Khammam district in Andhra Pradesh. It has reduced their dependence on firewood and traditional cooking methods. Rajkumari Ahirwar of Madhya Pradesh's Guna has benefited from the Ujjwala Yojana. She is a self-reliant woman who runs a self-help group. She supports her entire family with the gas cylinders provided under the Ujjwala Yojana and also runs a tiffin center.
6: Pareshani aati thi, dhuan lagta tha, kanda lakadiyan hoti nal ki bahut dikkat padti thi, ab Ujjwala mila hai jab se bahut fayda hai, 5 saal se yahi tanki chal rahi hai Ujjwala na, subsidy bhi milti hai us pe।
0: One scheme of the government has turned around the lives of many women across the country, brightening up kitchens in million households.
7: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Swachh Indhan, Behtar Jeevan।
0: farmers have been the backbone of this transformation envisioned by the Prime Minister over the past 12 years. PM Kisan Yojana has benefited 9.35 crore farmers in the 21st installment alone till November 2025, disbursing over 3.70 lakh crore rupees to 11 crore farmer families. Each farmer receives 6,000 rupees annually. It is the same story from Uttar Pradesh to Punjab.
8: मैं किसान हूँ, मैंने अपने खेत के लिए एक सोलर पैनल लगवा, जब तक धूप रहती है अच्छी सर्विस देता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पानी पानी रहता है, बिजली हो या ना हो इससे किसानों को बहुत फायदा है। सरकार की इस योजना को अधिक से अधिक किसान यूज करें, इसका बहुत बेनिफिट है हमें, लाइट हो या ना हो हमारे खेत की सिंचाई होती रहती है।
9: मेरे फादर नाम दे जमीन आ, उन्होंने 2000 रुपया आंदा है जी, मुआवजा समय पर मिल रहा, पर जो मेरी जमीन में कोई कोई एडा मार भी पानी की मार नहीं वजती थी, तो उस तरह सरकार वालों सब्सिडी मिलती है, मेरा उन्हें शहरी भी खाता मैं उन्हें भी सरकारी स्कीम मिलती है जी।